0: ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
1: जर्मनी और इतिहास, ये दो शब्द अगर एक सांस में बोल दिए जाएं तो दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है हिटलर का, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स का, गैस चैम्बर्स का। तो चलिए यहीं से करते हैं शुरुआत। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये ट्रिगर वार्निंग कि इस वीडियो में दिखाई जाने वाली कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, पर इन्हें देखना फिर भी जरूरी है ये समझने के लिए कि इंसान किस हद तक शैतान बन सकता है। आने वाले हफ्तों में बात करेंगे वर्ल्ड वॉर की, हिटलर की, बर्लिन वॉल की, लेकिन आज शुरुआत करते हैं उस जगह से जहां अगर कभी जिंदगी में आप जा पाए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जहां पहुंचकर एक उदासी आपसे खुद ब खुद लिपट जाएगी और जहां आप बस यही सोचते रह जाएंगे कि इंसान आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। बात हो रही है होलोकॉस्ट के सबसे भयानक कॉन्सेंट्रेशन कैंप आउशविट्स की। आज के वीडियो में जानिए कि क्यों आउशविट्स को ही इस काम के लिए चुना गया, क्यों जर्मन लोगों ने इस जेनोसाइड को रोकने की कोशिश नहीं की, कैसे स्टेप बाय स्टेप इस फाइनल सॉल्यूशन को अंजाम दिया गया और कैसे बेशर्मी से पूरी प्लानिंग को डॉक्यूमेंट भी किया गया। आउशविट्स ये नाजी जर्मनी का बनाया गया सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेशन कैंप था, जो आज होलोकॉस्ट और जीनोसाइड की निशानी बनकर रह गया है। किसी एक जगह पर इतनी बड़ी तादाद में लोगों की प्लान तरीके से हत्या कभी कहीं और नहीं हुई थी। यहां कम से कम 11 लाख लोगों को मारा गया, इसमें 9 लाख से ज्यादा यहूदी थे। ध्यान रखिए यह आंकड़ा सिर्फ आउशविट्स का है, जिसे हम होलोकॉस्ट के रूप में जानते हैं उसमें इससे कुछ 10 गुना ज्यादा लोगों की जान गई। यूरोप में रहने वाले कुछ 2/3 यहूदियों को सिस्टमैटिक तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया था। आउशविट्स सिर्फ एक कैंप था, इस तरह के सैकड़ों और छोटे बड़े कैंप तैयार किए गए थे। हाँ, आउशविट्स सबसे भयानक कैंप था। इसे बनाया गया था पोलैंड के ऑस्वेंचिम नाम के एक छोटे से शहर में, क्राकाउ से महज 70 किलोमीटर दूर। दरअसल 1939 में नाजियों ने यहां हमला करके इसे उस वक्त के जर्मनी में मिला लिया था और फिर अपनी आसानी के लिए शहर का नाम बदलकर आउशविट्स रख दिया था। 1940 से 45 के बीच यह जगह नाजियों की सबसे बड़ी मौत की फैक्ट्री बन गई। लेकिन यह मुमकिन कैसे हो पाया, इसके लिए बाकायदा प्लानिंग की गई। 1942 में बर्लिन के एक पॉश इलाके वानजे में एक मीटिंग हुई। इसमें नाजी पार्टी और उस वक्त की सरकार के सबसे अहम लोगों ने हिस्सा लिया। यहां ब्लूप्रिंट तैयार किया गया फाइनल सॉल्यूशन का, पूरे यूरोप से यहूदियों का नामो निशान मिटा देने का सॉल्यूशन। प्लान था यहूदियों को भेड़ बकरियों की तरह जमा करके पूर्वी कब्जे वाले इलाके में भेजने का, उन्हें भूखा प्यासा मारने का और जिन पर भूख और प्यास असर ना करे उन्हें गैस चैम्बर में डालने का। आउशविट्स को ही क्यों चुना गया, क्योंकि यहां रेलवे जंक्शन था और क्योंकि यह जगह जर्मनी की आम जनता की नजरों से दूर थी, इसीलिए यहां इस हैवानियत को अंजाम देना आसान था। कैंप तो 2 साल पहले से तैयार था ही, अब तक कैदियों को रखा जा रहा था, उन कैदियों को जिन्हें पोलैंड के उस हिस्से से लाया जा रहा था जिस पर नाजियों ने कब्जा किया हुआ था। लेकिन यहां जगह की कमी महसूस होने लगी तो 1941 में 3 किलोमीटर दूर बिरकनाओ में और ब्लॉक तैयार कर दिए गए। यहां 4 गैस चैम्बर्स बनाए गए और बगल में शमशान भी, क्योंकि मारे गए लोगों को जलाना भी तो होगा। इन कैंप्स में काम इंडस्ट्रियल स्केल पर हो रहा था, हर रोज ट्रेन भर कर लोग आते थे और एक प्रोसेस के तहत उनके साथ बर्बरता होती थी। ऐसा नहीं है कि लोगों को लाया गया और रैंडमली उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। किसी ब्लॉक में लोगों के साथ फिजिकल टॉर्चर किया जाता, किसी में रेप, किसी में मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स। लोगों का लाया सामान एक ब्लॉक में रखा जाता है। इनफैक्ट आज भी अगर आप वहां जाएंगे तो कुछ कमरों में आपको लोगों के जूते, उनके सूटकेस, यहां तक कि उनके साथ लाए बर्तन भी देखने को मिलेंगे। ये कैंप कई किलोमीटर के दायरे में फैला था। इसके कुल 3 हिस्से थे जिन्हें आउशविट्स 1, 2 और 3 का नाम दिया गया था। पहला और सबसे पुराना

0: अपना हिस्सा था मेन कैंप या आउशविट्स वन। यहाँ कैद खाने के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी था। यहाँ लोगों को खड़ा करके उन्हें गोलियां मार दी जाती थी। जहरीली गैस देकर पहली बार लोगों को यहीं मारा गया था। जो कैंप बिरकनाऊ में बनाया गया उसे आउशविट्स टू का नाम दिया गया। यहाँ दिन रात ट्रेनें आया करती, किसी रेलवे स्टेशन की जरूरत नहीं थी, ट्रेन सीधे कैंप के अंदर ही रुकती थी। ट्रेन से उतरते ही लोगों को अलग अलग बांट दिया जाता था। नाजी इसे सिलेक्शन कहते थे। कैंप के डॉक्टर तय करते कि कौन यहाँ काम करने लायक है और कौन नहीं। बीमार लोगों को, बुजुर्गों को और बच्चों को अक्सर सीधे ही गैस चेंबर में भेज दिया जाता। लोगों से कहा जाता कि उन्हें नहाने भेजा जा रहा है, उनके कपड़े उतरवा दिए जाते, फिर उन्हें एक कमरे में भर दिया जाता। ऊपर से पानी की जगह छिड़का जाता जहर। साइक्लोन बी नाम की इस गैस के भरने के बाद आधा घंटा लोग तड़पते रहते। मरने के बाद उनकी लाशों को पास में ही बनाए गए शमशान में जला दिया जाता। 1943 से 1944 के बीच हर दिन औसतन करीब 6,000 यहूदियों को इन गैस चैम्बर्स में मारा गया। यहूदियों के अलावा यहां सिंटी और रोमा समुदाय के लोगों की भी जान ली गई। युद्ध में पकड़े गए कैदी, विकलांग और होमोसेक्सुअल लोगों को भी चुन चुन कर मारा गया। इसके बाद तीसरा हिस्सा था आउशविट्स 3। ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप के साथ साथ लेबर कैंप भी था। यहां लोगों से जबरन केमिकल फैक्ट्री में मजदूरी करवाई जाती। उस दौरान दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, जिसके लिए यहां से पेट्रोल सप्लाई किया जाता था। कैदियों को बताया जाता कि काम करोगे तो ही जिंदा रह पाओगे, लेकिन गुलामी करवा करवा कर उनकी जान ले ली जाती। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होते होते यूरोप में हर 3 में से 2 यहूदी मारे जा चुके थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा जीनोसाइड हुआ कैसे, क्योंकि इन कैंप्स में जो लोग मारे जा रहे थे ये ऐसा नहीं है कि कहीं आइसोलेटेड रहते थे, ये आम लोग थे, जर्मनी के आम नागरिकों के ही कलीग्स, उनके दोस्त, उनके पड़ोसी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से इन्हें दुश्मन करार दे दिया गया और लोगों ने मान भी लिया? देखिए, रातों रात कुछ नहीं हुआ। इस ब्रेन वॉश में कुछ 12 साल का वक्त लगा। 1933 से 45 तक ऐसा क्या हुआ इन 12 सालों में, आइए अब वो समझते हैं। 30 जनवरी 1933 ये वो दिन था जब अडोल्फ हिटलर को जर्मनी के चांसलर का पद मिला। हिटलर सत्ता तक कैसे पहुंचा इस पर डिटेल में एक और वीडियो बनाएंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि यहीं से यहूदियों को अलग थलग करने, उनका बहिष्कार करने की शुरुआत हो गई थी। नाजी सरकार के पास आधिकारिक रूप से मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा भी थी और इस मंत्रालय की जिम्मेदारी थी योसेफ गोबेल्स के पास। अप्रैल 1933 में गोबेल्स ने यहूदी वकीलों, यहूदी डॉक्टरों और यहूदी व्यापारियों का बहिष्कार करने की घोषणा की।
1: Bis die Mitternachtstunde fortgesetzt. Vollzieht sich in einer schlagartigen Wucht, aber auch mit einer imponierenden Manneszucht.
0: इसके बाद यहूदी सिविल सर्वेंट्स को नौकरी से निकाला जाने लगा। उन्हें समाज से अलग करने की प्रक्रिया शुरू हुई। आम नागरिकों को बताया जाने लगा कि यहूदी आपके दुश्मन है। फिर 1935 में आए वो कानून जिन्होंने होलोकॉस्ट की नींव रखी, न्यूरनबर्ग कानून। September 15, 1935 को जर्मनी के न्यूरनबर्ग शहर में नाजियों की सालाना रैली के दौरान नाजी नेता हेरमन ग्योरिंग ने नए कानून की घोषणा की। इन कानूनों के तहत यहूदियों से उनकी नागरिकता का अधिकार ही छीन लिया गया। अब जर्मन और यहूदी आपस में शादी नहीं कर सकते थे, ऐसा करना अपराध माना गया। धीरे धीरे यहूदियों से सारे नागरिक अधिकार छीन लिए गए, उन्हें समाज से बेदखल किया जाने लगा और उनके खिलाफ हिंसा बढ़ने लगी। न्यूरनबर्ग लॉज की डिटेल में जाएंगे एक और वीडियो में, लेकिन सबसे अहम बात इस नए कानून में ये थी कि आर्यन खून की पवित्र

पवित्रता को बचाने के लिए यहूदियों के साथ शादी को अपराध घोषित कर दिया गया। बगैर शादी के किसी यहूदी से संबंध बनाना भी अपराध के दायरे में आ गया। मकसद यह था कि कोई भी यहूदियों के साथ मिलकर बच्चे पैदा ना करे ताकि आर्य नस्ल कहीं डाइल्यूट ना हो जाए। जर्मन बच्चा पालना तो बहुत दूर की बात है, ज्यूज को जर्मन ब्रीड का कुत्ता तक रखने की परमिशन नहीं थी। कुछ खरीदने जाना हो तो शाम को 4 बजे के बाद निकलो ताकि तुम्हारी परछाई भी जर्मन लोगों पर ना पड़ जाए। और सारी हदें पार हो जाती हैं 1938 में। 9 नवंबर 1938 को नाजियों ने यहूदियों के पूजा घर सिनागॉग्स को जलाना शुरू किया। आम जर्मन नागरिकों को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए कहा गया। यहूदियों के खिलाफ लोगों के मन में इतनी नफरत भरी जा चुकी थी कि जिन लोगों ने खुद आग नहीं लगाई उन्होंने उसे रोकने की जरूरत भी महसूस नहीं की। जले हुए सिनागॉग इस बात की गवाही दे रहे थे कि यहूदियों के खिलाफ नफरत और हिंसा का अब तक का सबसे क्रूर दौर आने वाला था। अब बात सिर्फ भेदभाव तक नहीं रह गई थी, अब उनकी जान पर बनाई थी। कुछ एक साल बाद 1 सितंबर 1939 को नाजियों ने पोलैंड पर हमला बोल दिया। यहां से शुरुआत हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। पोलैंड में रह रहे यहूदियों को लूटा गया, धन संपत्ति छीन कर उन्हें अपने घरों से निकाला जाने लगा। इन लोगों को पहचान के तौर पर अपनी बाजू पर स्टार ऑफ डेविड पहनने का हुक्म दिया गया ताकि दूर से ही दिख जाए कि कौन यहूदी है कौन नहीं। 1941 से नाजियों ने यही नियम जर्मनी के यहूदियों पर भी लागू कर दिया। इस दौरान पोलैंड के वार्सॉ में नाजियों ने यहूदियों के लिए घेटो कॉलोनियां भी बनाई। यहूदियों को समाज से काटने के लिए यहां भेज दिया जाता। इन कॉलोनियों की हालत इतनी खराब हुआ करती थी कि यहां रहने वाले लोग कभी बीमारियों से तो कभी ठंड और कभी भूख से मर जाते। और फिर हुई 1942 की वांजे कॉन्फ्रेंस, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। 20 जनवरी 1942 की सुबह बर्लिन के करीब वांजे झील पर बने इस आलीशान विला में 15 सीनियर नाजी ऑफिसर्स ब्रेकफास्ट मीटिंग के लिए जमा होते। सर्दी के मौसम में इस खुशगवार माहौल में ये लोग ज्यूज नाम की प्रॉब्लम का एक फाइनल सॉल्यूशन ढूंढने बैठते हैं। सिस्टमैटिक तरीके से लाखों यहूदियों का मास मर्डर करने का सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, गैस चैम्बर्स, ये सभी आइडिया इसी मीटिंग से निकले थे। और इस मीटिंग के बाकायदा नोट्स लिए गए थे। मिनट्स ऑफ द मीटिंग की इस कॉपी में 1,11,00,000 यहूदियों का जिक्र साफ देखा जा सकता है। अगले 3 साल इन लोगों को नाजियों की यातनाएं सहनी पड़ी। और फिर 27 जनवरी 1945 को जब सोवियत सेना लोगों को आजाद कराने आउशविट्स पहुंची तो वहां सिर्फ 7,000 लोग ही जिंदा मिले। होलोकॉस्ट में कम से कम 1.5 करोड़ लोगों की जान गई। इनमें से करीब 60 लाख यहूदी थे। जो जिंदा बच पाए उन्होंने अपनी दर्द भरी यादों के साथ इजराइल, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का रुख कर लिया। ये सब 1933 से 45 के बीच हुआ, लेकिन ये जर्मन हिस्ट्री का ऐसा डार्क चैप्टर है कि आज 2026 में भी जर्मनी अपने इतिहास को भूला नहीं है। स्कूली बच्चों को ना सिर्फ हिस्ट्री की बुक्स में ये सब पढ़ाया जाता है बल्कि उन्हें आउशविट्स ले जाया जाता है ताकि वो वहां जाकर अतीत की गलतियों को महसूस कर सके। आपने किया महसूस? बताइएगा कमेंट करके। जर्मन इतिहास के इस काले अध्याय को जारी रखेंगे अगली बार। नमस्कार।

0: शुरुआत से शुरू करूंगा, कहां से इनकी शुरुआत हुई और क्यों इनको प्रोसिक्यूट किया जाता रहा है। बहुत सारी चीजें छोड़ूंगा भी मैं, क्योंकि अगर एक एक चीज कवर करने बैठा तो बहुत दिक्कत होगी, लेकिन एक एक चीज का मैं आपको आइडिया दे दूंगा। तो इसके बाद आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। इसराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट पे बहुत सारे सवाल आते हैं, मेंस में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, वक्त लगेगा तो अभी मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। तो हम हिस्ट्री ऑफ ज्यूस जो है वो कवर करने वाले हैं, बहुत कुछ आपको पता चलेगा। क्रिश्चियनिटी को भी देखेंगे आज हम, जुडाइज्म को भी देखेंगे, इस्लाम को भी देखेंगे, जिनको इब्राहिमिक रिलीजन बोला जाता है, जो कि कॉमन पेट्रियार्क है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेनड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, आप इन नंबर पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। देखिए दोस्तों, इतिहास तो इनका बहुत साल पुराना है, ठीक है, 5000 साल 6000 साल इनका इतिहास पुराना है, लेकिन इनका जो इतिहास शुरू होता है वो बेसिकली 1000 BC से ही शुरू होता है, ठीक है ना, जब फर्स्ट टेम्पल बनने की शुरुआत हो गई, किंग सोलोमन ने फर्स्ट होली टेम्पल बनाया। देखिए, एक सवाल आपके मन में हमेशा आता रहा होगा कि ज्यूस को इतना प्रोसिक्यूट क्यों किया जाता है, ठीक है, 2000 सालों से उनका प्रोसिक्यूशन जो है वो।
1: जी बिल्कुल, मैंने लगता भी काफी डिटेल अज स्टोरी जी है जी, माहौल बन गया ते उतले पासे ध्यान करन दा सिस्टम जा बनया, बट थोड़ा जा डिफरेंट रिपोर्टर दी गलबात सुनदे हैं ताकि उहदे नाल गलबात जिहड़ी है थोड़ी जी डिफरेंट तरीके नाल हो जाएगी। सुनदे हैं एक डिफरेंट रिपोर्ट, फिर इस तो बाद वापस मिलते हैं, फिर और गल्ला पता तुहाडे नाल अच्छे तरीके नाल शेयर करते हैं। सबदंग रेडियो 94.7 जी।
2: किस्सा एक ऐसे फसाद का जिसका मूल है जमीन, और कितनी जमीन, सिर्फ 35 एकड़ का एक प्लॉट, माने इतनी विशाल दुनिया का 0.5 से भी कम हिस्सा। लेकिन ये छोटा सा प्लॉट दुनिया की सबसे विवादित जगहों में से एक है, इसलिए कि दुनिया के 3 बड़े धर्म इस प्लॉट पर दावा करते हैं। इस कंफ्लिक्टिंग दावेदारी के चलते कई युद्ध हुए, लगातार तनाव रहा। ये मामला जेरूसलम का है, वहाँ शहर के पुराने हिस्से में एक पहाड़ी के ऊपर फैला एक आयताकार प्लेटफॉर्म है। इसका क्षेत्रफल है करीब 35 एकड़। इस कंपाउंड को यहूदी पुकारते हैं हर हवाइयत, ये हिब्रू भाषा का शब्द है। इस नाम का प्रचलित अंग्रेजी संस्करण है टेम्पल माउंट, और इसी परिसर को मुस्लिम बुलाते हैं हरम अल शरीफ। एक ही जगह के अलग अलग नाम क्यों? इसकी वजह है दोनों धर्मों की मान्यताएं। यहूदी मानते हैं कि इसी जगह पर उनके ईश्वर ने वो मिट्टी सजोई थी जिससे एडम का सृजन हुआ। एडम माने वो पहला पुरुष जिससे इंसानों की भावी पीढ़ियां अस्तित्व में आई। यहूदियों की एक और मान्यता जुड़ी है टेम्पल माउंट से, उनके एक पैगंबर थे अब्राहम। अब्राहम के 2 बेटे थे, इस्माइल और इजाक। एक दफा ईश्वर ने अब्राहम से उनके बेटे इजाक की बलि मांगी। ये बलि देने के लिए अब्राहम ईश्वर की बताई जगह पर पहुंचे। यहाँ अब्राहम इजाक को बलि चढ़ाने ही वाले थे कि ईश्वर ने एक फरिश्ता भेजा। अब्राहम ने देखा फरिश्ते के पास एक भेड़ खड़ी है। ईश्वर ने अब्राहम की भक्ति, उनकी श्रद्धा पर मुहर लगाते हुए इजाक को बख्श दिया और उनकी जगह बलि देने के लिए भेड़ को भेजा। यहूदियों के मुताबिक बलिदान की वो घटना इसी टेम्पल माउंट पर हुई थी, इसीलिए इसराइल के राजा किंग सोलोमन ने करीब 1000 ईसा पूर्व में यहाँ एक भव्य मंदिर बनवाया। यहूदी इसे कहते हैं फर्स्ट टेम्पल। आगे चलकर बेबीलोनियन सभ्यता के लोगों ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया। तकरीबन 5 सदी बाद 516 ईसा पूर्व में यहूदियों ने दोबारा इसी जगह पर एक और मंदिर बनाया। वो मंदिर कहलाया सेकंड टेम्पल। इस मंदिर के अंदरूनी हिस्से को यहूदी कहते हैं होली ऑफ होलीज, यानी पवित्र से भी पवित्र, ऐसी जगह जहां आम यहूदियों को भी पांव रखने की इजाजत नहीं थी, केवल श्रेष्ठ पुजारी ही इसमें प्रवेश पाते थे। ये सेकंड टेम्पल करीब 600 साल तक वजूद में रहा। सन 70 में रोमन्स ने इसे भी तोड़ दिया, लेकिन इस मंदिर की एक दीवार आज भी मौजूद है। इसे कहते हैं वेस्टर्न वॉल। ये दीवार उस प्राचीन सेकंड टेम्पल के बाहरी अहाते का हिस्सा मानी जाती है। यहूदी अपनी ये मान्यताएं जानते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मंदिर का भीतरी हिस्सा, यानी वो होली ऑफ होलीज, टेम्पल माउंट के किस हिस्से में स्थित था। चूंकि प्राचीन समय में आम यहूदियों को वहां जाने की छूट नहीं थी, सो कई धार्मिक यहूदी आज भी ऊपरी अहाते में पांव नहीं रखते, वो वेस्टर्न वॉल के पास ही प्रार्थना करते हैं। ये तो हुई यहूदियों की मान्यता। अब बात करते हैं इस मामले के दूसरे

पक्ष यानी मुसलमानों की। उनका क्या दावा है? मुस्लिमों के मुताबिक इस्लाम की सबसे पवित्र जगहों में पहले नंबर पर है मक्का, दूसरे नंबर पर है मदीना और तीसरे नंबर पर है हरम अल शरीफ यानी जेरूसलम का वो 35 एकड़ का अहाता। इस इस्लामिक मान्यता का संबंध है कुरान से। कुरान के मुताबिक सन 621 की एक रात की बात है, पैगंबर मोहम्मद एक उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर मक्का से जेरूसलम आए और यहीं से वो ऊपर जन्नत में चढ़ गए। फिर जन्नत में जाने के बाद उन्हें अल्लाह के दिए कुछ आदेश मिले। क्या था इस आदेश में? इसमें बताया गया था कि इस्लाम के मुख्य सिद्धांत क्या हैं, मसलन दिन में 5 बार नमाज पढ़ना। सन 632 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई। इसके 4 साल बाद मुस्लिमों ने जेरूसलम पर हमला कर दिया। तब यहाँ बेजेंटाइन साम्राज्य का शासन था। मुस्लिमों ने जेरूसलम को जीता और आगे चलकर उमैयद खलीफाओं ने जेरूसलम में एक भव्य मस्जिद बनवाई। इसका नाम रखा अल अक्सा। अरबी भाषा में अक्सा का मतलब होता है सबसे ज्यादा दूर। इसी अल अक्सा मस्जिद के सामने की तरफ है एक सुनहरे गुंबद वाली इस्लामिक इमारत। इसे कहते हैं डोम ऑफ द रॉक। मुस्लिम मानते हैं कि सदियों पहले उस रात को उड़ने वाले घोड़े पर सवार पैगंबर मोहम्मद ने जेरूसलम में पहली बार जहां पांव रखा उसी जगह पर है अल अक्सा मस्जिद और जिस जगह से उठकर वो उस रात जन्नत चढ़े वहीं पर है डोम ऑफ द रॉक। और ये दोनों इमारतें जेरूसलम में कहां हैं? उसी 35 एकड़ वाले आयताकार कंपाउंड के भीतर जिसे यहूदी अपने प्राचीन मंदिरों की लोकेशन मानते हैं। अब आपको इस लोकेशन को लेकर बने झगड़े की वजह समझ आ गई होगी। अब सवाल है कि टेंपल माउंट उर्फ हरम अल शरीफ पर कंट्रोल किसका है? जवाब है इट्स कॉम्प्लिकेटेड। कैसे? ये जानने के लिए हमें फिर से हिस्ट्री बांचनी पड़ेगी। इतिहास में एक दौर हुआ क्रूसेड्स का, क्रूसेड यानी होली वॉर, ऐसे युद्ध जो धर्म के आधार पर लड़े गए। ये क्रूसेड्स हुए थे ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच। और इसकी वजह क्या थी? जब इस्लाम का विस्तार शुरू हुआ तो इस्लामिक साम्राज्य ने ईसाइयों द्वारा पवित्र मानी जाने वाली कई जगहों को जीत लिया। जेरूसलम भी इनमें से एक था। ये बात चर्च को असहनीय थी इसलिए कि जेरूसलम उन्हें भी बहुत अजीज था। ईसाई धर्म में जेरूसलम की क्या वैल्यू थी? ईसाई मानते हैं कि ईसा मसीह ने इसी शहर में अपना उपदेश दिया, यहीं उन्हें सूली पर चढ़ाया गया और यहीं पर वो दोबारा जी उठे। ईसाई ये भी मानते हैं कि एक रोज ईसा वापस दुनिया में लौटेंगे और उनकी सेकंड कमिंग में जेरूसलम का अहम किरदार होगा। अब इन सारी मान्यताओं की क्रोनोलॉजी देखिए। सबसे प्राचीन मान्यता है यहूदियों की। सबसे प्राचीन इसलिए क्योंकि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों यहूदी धर्म के बाद आए। यहूदियों पर हमला किया रोमन्स ने, उन्होंने जेरूसलम पर कंट्रोल किया। फिर आए मुसलमान, उन्होंने जेरूसलम को अपने कंट्रोल में लेकर यहाँ धार्मिक इमारतें बनवाई। फिर आगे चलकर ईसाइयों और मुस्लिमों में धर्म युद्ध शुरू हुआ। इसमें पहला ही युद्ध जेरूसलम के लिए लड़ा गया। इस फर्स्ट क्रूसेड के तहत जुलाई 1099 में ईसाइयों ने जेरूसलम को जीत लिया, लेकिन ये जीत ज्यादा समय तक बरकरार नहीं रही। 1187 में मुस्लिमों ने जेरूसलम को वापस हासिल कर लिया और उन्होंने हरम अल शरीफ का प्रबंधन देखने के लिए वक्फ यानी इस्लामिक ट्रस्ट का गठन किया। पूरे कंपाउंड का कंट्रोल इसी ट्रस्ट के हाथ में था और यहाँ गैर मुस्लिमों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। सदियों तक ऐसी ही व्यवस्था बनी रही। फिर आया 1948 का साल। इस बरस गठन हुआ इसराइल का, उसी जमीन पर जहाँ फिलिस्तीनियों का देश था। फिलिस्तीन और इसराइल दोनों के अपने अपने दावे। फिलिस्तीन का कहना था हमारे देश में दूसरा देश कैसे बनेगा। उनकी मांग थी कि कहीं और बनाया जाए यहूदी देश, लेकिन यहूदी इसके लिए राजी नहीं थे। उनका कहना था कि वो कहीं और क्यों जाएंगे, ये जमीन तो उनके पुरखों की है। उन्हें सदियों तक इस जमीन से बेदखल रखा गया, अब उन्हें जमीन वापस चाहिए। यहूदियों की इस दावेदारी का आधार क्या है? इस दावे पर बतौर सबूत इसराइल का आधार है एक धर्म ग्रंथ जिसका नाम है हिब्रू बाइबल। इस बाइबल का पहला हिस्सा कहलाता है बुक ऑफ जेनेसिस। इसके एक भाग का नाम है कोवेनेंट बिटवीन गॉड एंड अब्राहम, माने ईश्वर और अब्राहम के बीच हुआ करार। कैसा करार? यहूदियों के मुताबिक उसके पूर्वज अब्राहम पहले मेसोपोटामिया में रहा करते थे। ईश्वर के आदेश पर वो अपना घर बार छोड़कर नई जगह पहुंचे। ये जगह पश्चिमी एशिया में थी और तब इसे कहते थे लैंड ऑफ कैनन। यहूदी मान्यता के अनुसार इस जगह के लिए खुद ईश्वर ने अब्राहम को अपनी जबान दी थी। कहा था अब्राहम की संतान यहीं पर एक नया देश बसाएंगी। हमने आपको अब्राहम के बेटे इजाक की कहानी सुनाई थी। उन्हीं इजाक के बेटे का नाम था जैकब और इन्हीं जैकब का एक नाम था इसराइल। जैकब उर्फ इसराइल के 12 बेटे हुए, वो कहलाए 12 ट्राइब्स ऑफ इसराइल और इन्हीं कबीलों की पीढ़ियों ने आगे चलकर बनाया

0: यहूदी देश, वो देश जिसका प्राचीन नाम था लैंड ऑफ इसराइल, यानी इसराइल और उनके वंशजों की भूमि। मॉडर्न इसराइल की दावेदारी भी इसी प्राचीन मान्यता पर आधारित है। ये तो हुई इसराइल के गठन की कहानी। अब जूम करके आते हैं जेरूसलम पर। इसराइल जेरूसलम को अपनी राजधानी बनाना चाहता था क्योंकि उनकी पवित्रतम जगह है, उनका टेम्पल माउंट यहीं पर है। लेकिन जेरूसलम और टेम्पल माउंट पर अधिकार मिलना इतना साधारण नहीं था। यहूदियों की तरह दुनिया भर के मुसलमानों की भी आस्था इससे जुड़ी थी। मुसलमान पहले ही इसराइल के गठन का विरोध कर रहे थे। ऐसे में जेरूसलम और टेम्पल माउंट का कंट्रोल और इसराइल को मिल जाता तो भयंकर खून खराबा होता। साथ ही ये मुस्लिमों के प्रति पक्षपात भी होता। सवाल उठता है कि एक समुदाय की धार्मिक मान्यता को दूसरे समुदाय की आस्था से ऊपर कैसे रखा गया, कैसे लोगों को लगा कि पक्षपात होता। और इस सवाल के जवाब के लिए संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में दुनिया के बड़े देशों ने एक मसौदा बनाया। इसे कहते हैं पार्टीशन रेजोल्यूशन। इसमें प्रस्ताव दिया गया कि फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांट दिया जाए, एक हिस्सा यहूदियों का, दूसरा फिलिस्तीनियों का। और जेरूसलम पर क्या प्रस्ताव दिया गया? मसौदे के मुताबिक जेरूसलम पर इंटरनेशनल कंट्रोल की बात कही गई और इस कंट्रोल का पहरेदार यूएन ने खुद को बनाया। इसराइल इस मसौदे पर राजी था, लेकिन अरब मुल्कों ने इसे खारिज कर दिया। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष हुआ। इसी संघर्ष का एक अध्याय था 1967 का सिक्स डे वॉर। इस युद्ध में इसराइल की जीत हुई और इसके साथ ही टेम्पल माउंट के कंट्रोल में भी एक बड़ा बदलाव हुआ। आपको याद है हमने बताया था कि टेम्पल माउंट उर्फ हरम अल शरीफ परिसर का प्रबंधन वक्फ बोर्ड के हाथ में था। 1948 में इसराइल के गठन के बाद भी उनका कंट्रोल बना रहा था। गैर मुस्लिमों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन 1967 के युद्ध में इसराइल ने फिलिस्तीनी कंट्रोल के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया और इस अधिकृत हिस्से में टेम्पल माउंट भी था। इसराइल ने इस इलाके को जीत तो लिया, लेकिन उसने पवित्र परिसर के कंट्रोल में बदलाव नहीं किया। उस समय इसराइल के रक्षा मंत्री थे मोशे डायन। उन्होंने टेम्पल माउंट को लेकर मुस्लिम नेताओं से वार्ता की और दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ। इसके मुताबिक टेम्पल माउंट के प्रबंधन का अधिकार जॉर्डन को दे दिया गया, वो इसका कस्टोडियन बन गया। इस समझौते में एक बड़ा बदलाव ये हुआ कि अब यहूदियों को भी इस परिसर में प्रवेश की अनुमति मिल गई, लेकिन केवल पर्यटक के तौर पर। वो कंपाउंड में आ तो सकते थे, लेकिन पूजा पाठ नहीं कर सकते थे। क्या ये समझौता सबको स्वीकार था? जवाब है नहीं। दोनों तरफ के कट्टरपंथी इससे नाखुश थे। कट्टरपंथी मुस्लिम इस परिसर में गैर मुस्लिमों के घुसने से नाराज थे और कट्टरपंथी यहूदी कहते थे कि उनको टेम्पल माउंट में प्रार्थना का अधिकार मिले। और इसी का नतीजा आया 1982 में। इस बरस एलन गुडमैन नाम का एक इजरायली सैनिक पवित्र परिसर में स्थित डोम ऑफ द रॉक में घुस गया। उसने मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। इस वारदात में 2 लोग मारे गए। इस घटना के बाद यहूदियों और मुस्लिमों के बीच तनाव बढ़ गया। होता यह कि जब यहूदी परिसर के पास वेस्टर्न वॉल के पास प्रार्थना करते तो कई बार परिसर के भीतर से मुस्लिम उन पर पत्थर फेंकते। इसके चलते यहूदियों में भी टेम्पल माउंट पर अपना दावा मजबूत करने की जिद बढ़ गई। इसी दावे का एक मशहूर एपिसोड साल 2000 में सामने आया। इस बरस इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एरियल शेरन खूब भारी भरकम सुरक्षा के बीच टेम्पल माउंट पहुंचे। मकसद था इसराइल का अधिकार स्थापित करना। और इस प्रकरण के चलते भी खूब फसाद हुआ। जेरूसलम में दंगे हुए। आगे के वर्षों में भी टेम्पल माउंट के इर्द गिर्द तनाव बना रहा। छिटपुट संघर्ष और जोर आजमाइश की वारदातें होती रहीं। और इसमें बड़ा पॉइंट आया 2014 के आखिर में। हुआ ये कि एक यहूदी कट्टरपंथी था यहूदियों के उस धड़े का हिस्सा जो टेम्पल माउंट पर इजरायली कंट्रोल की मांग करता है। एक फिलिस्तीनी ने गोली मारकर उसकी हत्या की कोशिश की। कोशिश नाकाम रही, लेकिन वो फिलिस्तीनी इजरायली फोर्सेस के हाथों मारा गया। इस पर फिलिस्तीनी उबल पड़े। दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हुई। तनाव के चलते इसराइल ने कुछ समय के लिए मुस्लिमों के टेम्पल माउंट में घुसने पर पाबंदी लगा दी, पर फिलिस्तीनी लीडरशिप ने इसे जंग का ऐलान माना। इसके बाद से ही फिलिस्तीनी इस परिसर को लेकर बेहद सशंकित रहते हैं। उनको लगता है कि इसराइल इस पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। यहूदी कट्टरपंथी भी इस आशंका को हवा देते रहते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये सारा इतिहास हम आज क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एक बार फिर इस पवित्र परिसर और जेरूसलम के इर्द गिर्द संघर्ष तेज हो गया है।
1: दुनिया भर की जो आप गलबात करते हैं सो काफी क्योंकि डेली बेसिस से तुम्हें पता भी आप सुनते रहने इसराइल ईरान हम अब उधरले पास शुरू हो गया। इस तो पहला उस पूरे एरिए खिते सारिया एक्टिविटी जी चल रही सी जिदा अज तक कुछ पता नहीं चल रहा भी की माहौल बनेगा की नहीं होगा। एकदम ही उठते है तो

0: ਐਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਛੁਪਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਵੀ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ 94.7 FM ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
1: जो बात सामने आई थी कि ईरान की तरफ से पॉसिबल खतरे की खुफिया जानकारी की, तो क्या अमेरिका के लिए इतना बड़ा खतरा बन सकता है ईरान? समझेंगे मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट प्रोफेसर रेशमी काजी से। बात अफगानिस्तान के तालिबान सरकार की भी करेंगे और जानेंगे सत्ता में आने के 5 साल बाद महिलाओं को लेकर क्या सरकार का रुख बदला है। जानेंगे तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने बीबीसी की चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट लीज डुसेट को खास बातचीत में क्या बताया है। और अब चलते हैं कुछ और बड़ी खबरों के लिए सुमिरन के पास।
2: थैंक यू सो मच सारिका। तो ये है आज की कुछ न्यूज अपडेट्स। व्हाइट हाउस ने एक रिपोर्ट में क्लेम किया है कि 40 से ज्यादा देशों ने चीन को अमेरिकी टैरिफ से बचने में मदद की। चीनी सामान को ऐसे देशों के रास्ते अमेरिका भेजा गया जहां इम्पोर्ट फीस कम है। रिपोर्ट में भारत के साथ साथ कनाडा, मैक्सिको, जापान और दक्षिण कोरिया समेत कई देशों का नाम लिया गया है। यूक्रेन में अधिकारियों ने कहा है कि रात भर हुए रूस के हमलों में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है, इसमें एक 9 साल का बच्चा भी शामिल है। वहीं यूक्रेन ने भी रूसी ऑनलाइन रिटेलर वाइल्ड बेरीज पर हमले किए हैं। इस्लामाबाद में आयोजित एक प्रोग्राम में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भारत की ओर से सिंधु जल संधि को निलंबित किए जाने पर टिप्पणी की है। उन्होंने भारत को चेतावनी दी कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद उसकी रेड लाइन है और अगर भारत ने अपना रुख नहीं बदला तो उसे सीधा जवाब दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार से जुड़े कंटेंट के प्रसार से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील HS फुलका ने कहा कि ऐसे वीडियो अब सिर्फ इंस्टाग्राम पर सर्कुलेट ही नहीं हो रहे बल्कि उन्हें प्रमोट भी किया जा रहा है। फुलका ने कहा कि भारत सरकार ने भी इंस्टाग्राम पर इस तरह की सामग्री को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की है। जापान के चीबा प्रांत में भारी बारिश के चलते 8 लोगों की मौत हो गई। राजधानी टोक्यो के पास मौजूद चीबा में बारिश के कारण ट्रेन, बस और टैक्सी सर्विस पर असर पड़ा है। हजारों यात्री टोक्यो के नारिता एयरपोर्ट पर रात भर फंसे रहे। हालात को देखते हुए राहत और बचाव अभियान जारी है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। अब चर्चा के लिए वापस चलते हैं। बैक टू यू सारिका।
1: तो आज जिस मामले की हम बात करने वाले हैं वैसे तो मामला पिछले महीने का है, यानी 8 जुलाई का, जब नाटो समिट में शामिल होने के लिए डोनाल्ड ट्रंप तुर्की गए थे। तुर्की से लौटते वक्त ट्रंप ने अपना विमान बदला था। उस वक्त क्या हुआ था पहले वो बात करते हैं। एक ड्रामेटिक इवेंट के तहत राष्ट्रपति ट्रंप को अचानक अपना प्लेन बदलना पड़ा था और इसके लिए सीक्रेट सर्विसेज के अधिकारियों की सलाह मानकर कैटरिंग ट्रक में उन्हें छिपना पड़ा और फिर प्लेन बदलना पड़ा। आपको यह भी याद दिला दें कि यह वो वक्त था जब अमेरिका ईरान पर और ईरान अमेरिकी सैनिकों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे। ट्रंप ने खुद इसकी पुष्टि की थी कि उनकी जान को खतरा था और उन्हें प्लेन बदलने की हिदायत दी गई थी।
3: ये खुफिया सर्विस पर निर्भर करता है। सीक्रेट सर्विस और मिलिट्री जो कहते हैं मैं वो करता हूँ। उन्होंने मुझसे एक दूसरी उड़ान में जाने को कहा, दूसरा प्लेन सेफ्टी के लिए। उन्होंने मुझसे जो करने को कहा मैंने वो किया।
1: तो क्या ईरान से अमेरिका के राष्ट्रपति को कोई खतरा है? क्या ईरान दूसरे देशों में भी ऑपरेशन चला सकता है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मध्य पूर्व मामलों की एक्सपर्ट प्रोफेसर रेशमी काजी। रेशमी जी, अमेरिका के लिए ईरान का खतरा कितना बड़ा है? क्योंकि 1980 के दशक में ऐसी कई घटनाएं हुई जिनसे पता चला कि ईरान का एक इतिहास रहा है जमीन के बाहर के हमलों का भी।
4: थैंक यू सारिका। पॉलिटिकल लीडर्स को इस तरह की खतरा ये कोई नई बात नहीं है, इट्स अ कॉमन मैटर।

0: हमारे भारत में भी इस तरह का कई इंसिडेंट्स है, और ये तो रह गए यूएस के प्रेसिडेंट, जो खुद ही उनका स्टेटमेंट है, प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टेटमेंट है कि वो कॉन्सिक्वेंशियल लीडर है, अगर इनकॉन्सिक्वेंशियल लीडर होते तो उनको शायद इस तरह का खतरा नहीं होता। जहां तक ईरान की बात है, एक रिवेंज रेटोरिक, ये एक नैरेटिव है कि जिस तरह का लॉस, जिस तरह का हानिकारक हमला और जितना इनका लॉस हुआ है इन इन कई महीनों में, तो ईरान एक अपने तरीके से एक रिवेंज रेटोरिक इनका है, लेकिन ये अगर इस खतरे पर जो ईरान को जो लिंक किया जा रहा है, इस विषय पर अगर फोकस करके बात किया जाए, तो अभी तक इसका कोई पुष्टिकरण नहीं हुआ है कि ईरान इसमें लिंक्ड है कि नहीं। हालांकि एक हिस्ट्री रहा है, एक इतिहास है कि ईरान इस तरह की पहले भी हमला करने की कोशिश किए हैं, लेकिन इसको नापा किस तरह से जाए, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2022 में जॉन बोल्टन पर भी अटैक होने की बात हुई थी, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप की री इलेक्शन के दौरान उन पर फिर से सर्वेलेंस रखने की भी
1: जी
0: एक इंस्ट्रक्शन दिया गया था, लेकिन वैसे तो कुछ हुआ नहीं है। तो एक आप एक वी कैन नॉट रियली कंफर्म कि कितना खतरा, खतरा तो सब कोई को है, लेकिन हम इस तरह से क्योंकि पुष्टिकरण नहीं हुआ है, तो कुछ कंफर्म में मैं बोलना, आई थिंक दैट वुड बी वेरी प्रेजम्पशियस।
1: रेशमी जी, इसमें ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि ईरान के जो फॉरेन कवर्ट ऑपरेशंस हैं वो कितने डेवलप्ड हैं?
0: अगेन मैंने अभी कहा कि जैसे बोल्टन, जॉन बोल्टन पर 2022 में अटैक होने की बात हुई थी वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क में प्रेसिडेंट ट्रंप पर भी उनके री इलेक्शन के दौरान अटैक होने की फिर से कॉन्स्पिरेसी थी, तो लेकिन इससे कुछ हुआ तो नहीं, इसका कोई रिजल्ट तो उस तरह से डिजायर्ड रिजल्ट तो प्रोड्यूस नहीं हुआ। जो हमें इसका देखना, जो जो इम्पोर्टेंट बात जो है, जो फोकस करने की बात है कि असैसिनेशन अटेम्प्ट्स जो है, अगर वो कामयाब हुआ कि नहीं, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये है कि इसका क्या मैसेज कन्वे करता है, और ये छवि जो है कि जो ईरान में अभी जो जो यूएस और ईरान के बीच जो बातचीत चल रही है, जो
1: जी
0: डिफिकल्ट है, जो कॉम्प्लिकेशंस है, उसके दौरान इस तरह का एक सिचुएशन बनना, एक इंसिडेंट होना, ये अपने आप में एक ये छवि अच्छी नहीं है, इसका
1: बिल्कुल
0: मैसेज सही नहीं जा रहा है, ना ही वॉशिंगटन में, ना ही ईरान में, और ना ही विश्व में, इसका जो सिग्नल है वो सही नहीं जा रहा है। इट मेक्स प्रेसिडेंट ट्रंप लुक वेरी वीक।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और खासतौर से तब जब ये युद्ध की शुरुआत इस बात पर हुई थी कि अमेरिका और इसराइल ईरान को कमजोर करना चाहते थे, और जब तमाम सर्वोच्च नेता से लेकर एक ऊपर का जो लेयर है नेताओं का वो मारे गए थे। इस पर हम बात करेंगे, आपके पास लौटूंगी मैं थोड़ी देर में। लेकिन प्लेन बदलने का फैसला इतनी जल्दी में आखिरकार क्यों लेना पड़ा था, ये समझने के लिए बीबीसी संवाददाता आसमा खालिद ने बात की वॉशिंगटन पोस्ट के संवाददाता डैन लामोथे से, जिन्होंने ट्रंप के कैटरिंग ट्रक में छिपने और प्लेन बदलने की खबर को ब्रेक किया था।
2: Yeah, for months now, there's been this discussion of how the president travels and whether he's traveling on planes that are appropriate. And
3: महीनों से ये चर्चा हो रही थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप कैसे ट्रैवल करते हैं, कौन सा प्लेन उनके लिए सही होता है। पिछले साल ही अमेरिका 747 प्लेन लेकर आया था जो कतर ने गिफ्ट किया था, फिर इसे हजारों डॉलर लगाकर अपग्रेड किया गया, फिर ट्रंप इस प्लेन में बैठकर गए, लेकिन जब वो वापस आने लगे तो उसमें नहीं आए, कहा गया कि सिक्योरिटी कंसर्न था।
1: लेकिन फिर एक तीसरे प्लेन की भी कहानी सामने आई। दरअसल ट्रंप किसी और प्लेन से गए, किसी और प्लेन से उन्हें वापस आना था, लेकिन उन्होंने चुना वापस आने के लिए एक तीसरे प्लेन को, जो था उन्हीं का पुराना ओल्ड एयरफोर्स वन। बीबीसी पर्शियन संवाददाता परहम गोबादी ने ट्रंप को लेकर खतरा होने की बात की थी एक्सपर्ट से, और एक्सपर्ट ने क्या जानकारी दी वो उन्होंने ये बताया।
4: So what we have to keep in mind, it coincided with the days that Iranian Supreme Leader, former Supreme Leader.
3: ये वही वक्त था जब ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी का अंतिम संस्कार हो रहा था. तभी बदला लेने की बात हो रही थी. जब मैं टीवी पर फ्यूनरल लाइव देख रहा था.

0: तभी एक शख्स जो भीड़ को संबोधित कर रहा था वो सर्वोच्च नेता की कसम खाकर कह रहा था कि खामेने के खून का बदला लिया जाएगा।
1: And you would see banners that in English, not only talking about
0: banners, posters पर अंग्रेजी में लिखा था किल डोनाल्ड ट्रंप। ईरान की सत्ता हमेशा से अमेरिका इसराइल के खिलाफ रही है, लेकिन अंग्रेजी में इस तरह बैनर नहीं लगाया जाता था। लेकिन उन्हें ये भी पता है कि एक मौजूदा राष्ट्रपति को मारने का अंजाम क्या हो सकता है। मामला बहुत बढ़ सकता था। हालांकि ईरान में कट्टरपंथी हैं, लेकिन जो लोग सरकार चलाते हैं, जो फैसले लेते हैं, उन्हें पता है इस फैसले के खतरे क्या हो सकते थे।
2: और रेशमी जी हमारे साथ बनी हुई है। रेशमी जी, अगर हम बात करें ईरान की दो धड़ों की, जिसकी बात पर हम गोबादी भी कर रहे थे बीबीसी संवाददाता, एक कट्टरपंथी धड़ा है और एक सरकार है वहां पर जिसे फैसले लेने पड़ते हैं, जिसमें से राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां भी हैं जो कि मॉडरेट माने जाते हैं। लेकिन अगर इस तरह के फैसले लेने पड़ेंगे देश में तो कौन धड़ा भारी पड़ेगा?
3: देखिए, ईरान अभी तक काफी लॉस झेल चुके हैं, काफी उनको प्रॉब्लम्स हुआ है, लेकिन फिर भी ईरान जैसे डटे हुए, इनका जो पेन जो दर्द का जो अब्सॉर्ब करने की जो शक्ति है उसमें काफी वो दृढ़ रहे हैं। इस बैकग्राउंड में अगर देखा जाए, ईरान चाहेंगे कि अपना मुद्दों पर वो डटे रहे, जो है हॉर्मुज पर वो अभी भी डटे रहे हैं, और उस पे अपना प्री कंडीशंस जो है उसमें वो थोड़ा भी बज नहीं हो रहे। द पॉइंट इज, ईरान अपने आप को ये इस अपने आप को दिखा रहे कि ये बहुत ज्यादा दुस्साहस जो है वो दिखा रहे। इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर एम्बोल्डेंड एंटेगनिस्टिक, उनका एक जो पोजिशन है वो जैसे दिन बे दिन वो और भी यू नो एक प्रोनाउंस्ड वे में हो रहा है। और इसमें एक तरह से सिग्नलिंग भी है कि हम जो इनका जो पोजिशन है, चाहे वो कट्टरपंथी हो चाहे वो मॉडरेट्स हो, कुछ कंडीशंस है जहां से वो बिल्कुल टस से मस नहीं होंगे। और अथॉरिटीज एक दिखा रहे हैं कि उनके अगर वो चाहे अगर पॉसिबल हो तो ये जंग वो आगे ले जाएंगे। एस्केलेशन लैडर अगर बढ़ाना हो तो वो इसमें पीछे नहीं हटेंगे। तो ये चीजें बहुत क्लियर है कि अपने कंडीशंस पर चाहे वो कोई भी हो, मॉडरेट्स हो या फिर हार्डलाइनर्स हो, उनके कुछ मुद्दे हैं और उन मुद्दों में से वो पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए
2: लेकिन सवाल है कि क्या इतने बड़े फैसले वो ले सकते हैं जैसे असैसिनेशन एक मौजूदा राष्ट्रपति का किसी देश के, और वो भी तब जब सर्वोच्च नेता के साथ साथ रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के भी बहुत अहम लोगों को वहां पर मार दिया गया। ट्रंप भी ये दावा कर चुके हैं, फिर भी अमेरिका को क्या डर है ईरान से अब भी?
3: पहली बात तो अगर इस तरह का सिचुएशन हो रहा है, इसका कम्युनिकेशंस जो मैसेजेस जो जा रहे ना ही खाली अमेरिकन्स को, उनके ऑफिशियल्स को, बट आल्सो उनके जो सोल्जर्स को, ये एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है कि ये जंग फिर कैसे खत्म होगी या फिर खत्म एट ऑल किस कॉस्ट पे होगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है यूएस के लिए, क्योंकि इनके मिड टर्म इलेक्शंस नवंबर में है।
2: बिल्कुल।
3: और अभी भी,
2: लेकिन प्रोफेसर रेशमी, एक सवाल ये भी है कि क्या खतरा तो है अमेरिका को, लेकिन क्या पर्सनल कीमत अब डोनाल्ड ट्रंप को चुकानी पड़ रही है जब खतरा उन तक पहुंच गया है?
3: बिल्कुल, क्योंकि अगर जैसे उन्होंने कहा कि वो एक कॉन्सिक्वेंशियल लीडर है, लेकिन अगर इस तरह का उनको एक डिकॉय में, एक फूड केटरर की डिकॉय में उनको छुप के निकलना पड़ रहा है, फिर एक नहीं दूसरा नहीं तीसरा प्लेन में उनको निकलना पड़ रहा है, तो ये क्या छवि जा रही है कि वो कितने दुर्बल है, और ये छवि पूरा विश्व में जा रहा है और ये सही नहीं है। एट दिस स्टेज जो अब तक जो पोजीशन ईरान जो यूएस लेके चल रहे थे, ये
2: बिल्कुल
3: अच्छा सिग्नल नहीं जा रहा।
2: बिल्कुल प्रोफेसर रेशमी, अभी बात फिलहाल हम यूएसएस अब्राहम लिंकन की भी कर लेते हैं, क्योंकि खबरों के मुताबिक अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर सवार अमेरिकी सैनिक खाने की कमी, खराब पाइपलाइन, थकान जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, और ये सैनिक कई महीनों से इस पर तैनात हैं। और अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने भी यूएसएस अब्राहम लिंकन से जुड़ी रिपोर्ट्स को पूरी तरह

0: उनका कंफर्ट लेवल अगर ठीक से नहीं देखा जा रहा है, उनका खाना पीना, और सबसे बड़ी बात मनोबल, इतना दीर्घ काल तक अगर वो अपने फैमिली से है तो इसका काफी असर तो पड़ रहा है। और ये यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और यूएस पावर के लिए ये सही नहीं है।
1: जी जी रेशमी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।
0: थैंक यू।
1: और 5 साल पहले साल 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान में वापसी की, तब से लेकर अब तक यहां की नई सरकार और महिलाओं और बच्चियों को लेकर उसके रवैये की काफी चर्चा रही। तालिबान ने स्कूल खोलने की बात की लेकिन स्कूल खुले नहीं, यूनिवर्सिटीज में महिलाओं पर पाबंदी लगी, नौकरी करने वाले महिलाओं से घर पर रहने को कहा गया, चेहरा ढकना, पार्कों जिम में जाने से मनाही, महिला लेखकों की किताबों पर बैन, ये सब कुछ हुआ। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि महिलाओं को लेकर बाधाओं की जड़ें गहरी हैं, इस कारण महिला अधिकारों की स्थिति बिगड़ती गई है। बीबीसी की चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट लीज डुसेट ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के प्रवक्ता से बात की और महिलाओं के हालात को लेकर सवाल पूछे।
2: हाँ, हमने कहा था कि जो हम करेंगे वो इस्लाम और इस्लामी कानून के हिसाब से करेंगे। मौजूदा वक्त में महिलाएं उन जगहों पर काम करती हैं जहां उनकी जरूरत है और इस्लाम इजाजत देता है। सरकारी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी 24% है।
3: आप जानते हैं कि कितनी महिलाओं को अपनी नौकरियां छोड़नी पड़ी। सेकेंडरी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज बंद हैं। ये कब खुलेंगे? स्कूल कब खुलेंगे? कुछ दिन में या महीनों में?
2: नहीं, अभी तो 6ठी क्लास तक एजुकेशन जारी है। जहां तक यूनिवर्सिटीज का सवाल है, अभी तक इस मामले को इस तरह से फाइनल नहीं किया जा सका है जिसमें सभी पहलुओं का ध्यान रखा जा सके। इसके लिए जिम्मेदार इंस्टीट्यूशंस अपनी कोशिशें कर रहे हैं।
3: क्या ये बेहतर नहीं होगा कि ईमानदारी से कहा जाए कि ये नहीं खुलने वाले?
2: हम नेचुरली इस्लाम और शरिया कानून मानते हैं। जब शरिया के हिसाब से जरूरतें पूरी हो जाएंगी तो समस्या हल हो सकती है।
4: What do you say to the Islamic scholars who have come?
3: दुनिया भर से अफगानिस्तान आए उन इस्लामिक स्कॉलर्स, इस्लामिक लीडर्स से आप क्या कहेंगे जो आपसे कहते हैं कि इस्लाम महिलाओं को पढ़ाई और काम करने का हक देता है?
4: What do you say to them?
2: मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस मसले पर ज्यादा ध्यान ना दें क्योंकि ये धर्म और शरिया पर आधारित पोजीशन से जुड़ा है। हम धार्मिक मामलों, जिहाद के हर मुद्दों और स्कॉलर्स के बीच के मतभेदों पर बीबीसी के किसी कार्यक्रम में चर्चा नहीं कर सकते।
3: आपने लड़कियों से वादा किया था कि वो स्कूल जाएंगी। जब आप लड़कियों की अपनी जान देने की खबरें सुनते हैं क्योंकि उन्हें अपना भविष्य नहीं दिखता, तब आपको कैसा महसूस होता है?
2: इस समस्या के हल के लिए हम वो सब करेंगे जो हमारी क्षमता में है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लड़कियों के पास भी इस समस्या से निपटने के लिए कुछ अल्टरनेटिव तरीके हैं। हालांकि हम शरिया कानून मानने के लिए बाध्य हैं।
4: Many countries, including countries from the West.
3: वेस्टर्न मुल्कों के साथ साथ कई और देशों का कहना है कि तालिबान के साथ उनकी बातचीत में बहुत कम तरक्की है। क्या चीज है जो सही से काम नहीं कर रही? क्या कोई और तरीका भी है?
2: वेस्टर्न कंट्रीज को अपनी पॉलिसीज़ बदलनी चाहिए। दुर्भाग्य से उनकी पॉलिसीज़ वही हैं जो युद्ध के वक्त थीं और जब हमसे उनके कोई रिलेशंस नहीं थे। उन्होंने सैंक्शंस लगाए और हम जो करना चाहते थे वो करने नहीं दिया। वो अब भी उसी पॉलिसीज़ पर चल रहे हैं। हम डिप्लोमेटिक रिश्ते चाहते हैं ताकि बातें स्पष्ट हों, जो समस्याएं आती हैं उनका हल निकाला जा सके।
1: तो ये थी तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद से बीबीसी की खास बातचीत। और इस बार द लेंस में किस मुद्दे पर चर्चा होगी, जानते हैं मुकेश शर्मा से।
5: सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुआ मक्का ज्वाइंट डिफेंस अग्रीमेंट मध्य पूर्व की बदलती सुरक्षा व्यवस्था में एक नया समीकरण है, लेकिन भारत के लिए इसका क्या मतलब है? क्या यह समझौता सिर्फ सामूहिक सुरक्षा की कोशिश है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीतिक चुनौती छिपी है? सऊदी पाकिस्तान के बढ़ते सुरक्षा रिश्तों का भारत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए इस समझौते के मायने और भारत के सामने खड़े सवाल द लेंस में शनिवार को बीबीसी न्यूज हिंदी के वेबसाइट और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर।
1: तो आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी, गैलरी में थी मेगल, शो को प्रोड्यूस किया मानसी दाश ने। अब हम सोमवार को मिलेंगे। आज के लिए अलविदा।

0: हो सकता है कि आप इसे अब्यूज ना माने, लेकिन अपने साथी को धमकी भरे संदेश भेजना, उनकी लोकेशन को गुप्त रूप से ट्रैक करना या उनके फोन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना भी अब्यूज ही है। तकनीक के माध्यम से किया जाने वाला दुर्व्यवहार शारीरिक नहीं होता, लेकिन उसका प्रभाव उतना ही गंभीर और नुकसानदायक हो सकता है। यदि आप या आपका कोई परिचित तकनीक का उपयोग किसी को नुकसान पहुंचाने या उस पर नियंत्रण रखने के लिए कर रहा है तो बदलाव संभव है। हिंसा को समाप्त करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए alberta.ca/endgbv पर जाएं। अल्बर्टा सरकार की ओर से संदेश।
1: पंजाब तो प्रसिद्ध पत्रकार जितेंद्र पन्नू जी सोमवार तो शुक्रवार रेडियो सुरसंगम 94.7 FM ते सुनो। हफ्ते दे वी घंटे रेडियो सुरसंगम, रेडियो सुरसंगम .ca, फोन 403-585-0910। रेडियो सुरसंगम
2: कैलगरीज ओल्डेस्ट बिगेस्ट एंड ओनली साउथ एशियन रेडियो स्टेशन, सबरंग रेडियो 94.7 FM।
3: मंडे ट्यूजडे थर्सडे फ्राइडे 7 to 8 PM, संडेज 1 to 5 PM।
2: विजिट sabrang.ca।
4: The following program speaks to the East Indian community, uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.
5: Touch yourself.

0: wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app, available now for free on your device's player or app store, connecting you to the community anytime, anywhere.
1: हो सकता है कि आप इसे अब्यूज ना समझें, लेकिन अपने शरीके हयात को धमकी भरे पैगाम भेजना, उनकी लोकेशन को खुफिया तौर पर ट्रैक करना, या उनके फोन की सरगर्मियों पर कंट्रोल रखना भी तो बदसलूकी ही है। टेक्नोलॉजी के जरिए की जाने वाली बदसलूकी जिस्मानी तो नहीं होती, लेकिन इसके असरात उतने ही संगीन और नुकसानदेह हो सकते हैं। अगर आप या आपका कोई जानने पहचानने वाला टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने या उस पर कंट्रोल रखने के लिए कर रहा है, तो तब्दीली मुमकिन है। मजीद मालूमात के लिए alberta.ca/

0: ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਸ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca।
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890-687-360-6890। लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक,
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदा, लिसनिंग टू कंट्रीज मोस्ट पॉपुलर रेडियो, रेडियो सबरंग 94.7 FM।
4: टेक योर बिजनेस बियॉन्ड।

कारखाने बने, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, अस्पताल खुले, पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए आर्थिक स्थिति में सुधार की नींव पड़ी। 1960 के दशक में ये सपना खाद्यान्न सुरक्षा से जुड़ गया। जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। हरित क्रांति ने राह दिखाई। 1970 के दशक में गरीबी हटाने की बात चली। 1980 के दशक में मध्य वर्ग में शामिल होने की चाहत ने जोर पकड़ा। टीवी, कूलर और स्कूटर अपनी पहुंच के अंदर की चीजें समझे जाने लगे। उन्नीस के दशक में बाजार खुलने के बाद देश में विदेशी पूंजी का प्रवाह तेज हुआ। मध्य वर्ग ने कार का सपना देखा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत आईं। साल 2000 के बाद ये सपना अमेरिका, यूरोप में करियर, अपने फ्लैट और बड़ी कार का सपना हो गया। साल 2010 के बाद ये सपना सोशल मीडिया पर पहचान बनाने, छोटे बिजनेस के बजाय $1 अरब वाली यूनिकॉर्न कंपनी बनाने का हो गया। देखा जाए तो साल 2020 के बाद से भी एक सपना लगातार भारतीय नागरिकों के सामने पेश किया जा रहा है। ये सपना भी सरकार की ओर से ही पेश किया जा रहा है, पर इसकी टाइमलाइन थोड़ी लंबी है। ये सपना है साल 2047 तक भारत को विकसित बनाने का। पहली बार सरकार ने एक दीर्घकालीन लक्ष्य रखा है और उसे पूरा करने की दिशा में काम शुरू किया है, लेकिन पहले कोविड और फिर यूक्रेन पर रूसी हमले और ईरान अमेरिका संकट ने इसमें बाधाएं खड़ी की हैं। हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने विकसित भारत का स्पष्ट खाका खींचने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित होने के लिए अगले 21 सालों तक 9.25% की औसत विकास दर बनाए रखनी होगी। इससे देश की प्रति व्यक्ति आय 6 गुना से ज्यादा बढ़कर $18,000 के करीब जा पहुंचेगी, जो अभी करीब $2,800 है। यूं तो ये आंकड़ा बहुत मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि विशाल अर्थव्यवस्थाओं में भारत लंबे समय से अच्छी विकास दर बनाए हुए है। सैलरी में होने वाली औसत सालाना बढ़ोतरी भी अच्छी है। फिर भी भारतीय दिनों दिन कठिन आर्थिक हालात क्यों महसूस कर रहे हैं, जबकि इन आंकड़ों में भारत की स्थिति ठीक दिखती है? जमीन पर इन आंकड़ों से सीमित राहत ही मिलती है। भारत की आधी से ज्यादा आबादी 30 साल से कम की है। भारत इस आंकड़े पर गर्व करता है और वैश्विक मंचों पर इस डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में गर्व के साथ बताता भी है। लेकिन इसी युवा कर्मचारी समूह में खुद भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी दर करीब 10% है। आईएलओ और वर्ल्ड बैंक के आंकड़े तो और ज्यादा निराशाजनक हैं, जो 15 से 24 के आयु वर्ग में बेरोजगारी दर करीब 18% दिखाते हैं। इस डेमोग्राफिक डिविडेंड की चर्चा कम से कम पिछले एक दशक से काफी हुई है। इसके बावजूद भी भारत इस युवा वर्ग को भविष्य के स्किल्स और नौकरियों की चुनौतियों के लिए तैयार करने में अमेरिका, चीन और जर्मनी ही नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के मुकाबले भी कमजोर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से नई नौकरियों की उम्मीद थी, जो पूरी नहीं हुई है। यदि हम शिक्षा पर सरकारी खर्च की बात करें तो हर स्टूडेंट पर खर्च के मामले में दक्षिण अफ्रीका भारत से 2 गुना आगे है, चीन 3 गुना, जर्मनी 12 गुना और अमेरिका 14 गुना। ऐसे में कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए जब OECD रिपोर्ट कहती हो कि भारत में गरीब परिवार में पैदा हुए बच्चे को मध्यम कमाई तक पहुंचने में करीब 7 पीढ़ियां लग जाती हैं। सोशल मोबिलिटी के मामले में देश सबसे खराब देशों की लिस्ट में शामिल है। भू राजनीतिक चुनौतियों की वजह से विकास दर में बाधा आई है, जिसे दूर करने के लिए भारत ने एक के बाद एक देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया। वैश्विक स्तर पर भारत FTA पर FTA करके भले ही सुर्खियां बटोर रहा हो, लेकिन FTA के बाद ये एक पैटर्न की तरह दिखा है कि FTA वाले देश भारत के बाजार में काफी छूट ले लेते हैं। इसके बाद वे भारत से जितना आयात नहीं करते उससे कहीं ज्यादा उसे निर्यात करने लगते हैं। ऐसे में FTA के बाद भारत का इनसे व्यापार घाटा तो बढ़ता ही है। भारत के कई मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र इनसे प्रतिस्पर्धा की हालत में भी नहीं रह जाते, इससे नौकरियां भी प्रभावित होती हैं। वही नौकरियां जिनके बिना भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड

0: ਕੋਲ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca।
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक, जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का जन्मदिन है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890। लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक,
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। लिसनिंग टू कैलगरीज मोस्ट पॉपुलर रेडियो, रेडियो सबरम 94.7 FM।
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store.
0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ, ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca।
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक, जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890। लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक,
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
5: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए। सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर, जहां होता है एनर्जी, एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन। चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग, कोई खास इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन, हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते, हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं। हमारी टीम पहुंचती है आपके पास, लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में। ज्यादा पहचान, ज्यादा भरोसा, ज्यादा ग्राहक। अपने बिजनेस को बनाइए खास, दिखाइए, सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए। आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ, आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी। Monday, Tuesday, Thursday and Friday 7 to 8 p.m. Sunday 1 to 5 p.m.
6: Asia Pacific Immigration Consulting Limited, Student Visa, Visitor Visa, Super Visa, LMIA Applications, Family Immigration, Provincial Nominee Application, ਅਤੇ Citizenship Application ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੈਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੋਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ 403-225-1111। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸਿਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਲਿਮਿਟਡ,
7: ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ।
5: From the heart of Calgary to every corner within a 250 kilometer reach, Sabrang Radio is connecting voices, stories, and communities like never before. Whether you're in Calgary, Airdrie, Chestermere, Cochrane, or tuning in from Okotoks, High River, Strathmore, and beyond, we are one sound, one family, one Sabrang. Feel the rhythm, celebrate the culture, and stay connected with voices that matter. More events, more stories, more celebrations are on the way, only on Sabrang Radio, your voice across every mile. Visit our official website, www.sabrang.ca.
8: ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮੇਨਟੇਨ

0: whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
1: हो सकता है कि आप इसे अब्यूज ना समझें, लेकिन अपने शरीके हयात को धमकी भरे पैगाम भेजना, उनकी लोकेशन को खुफिया तौर पर ट्रैक करना या उनके फोन की सरगर्मियों पर कंट्रोल रखना भी तो बदसलूकी ही है। टेक्नोलॉजी के जरिए की जाने वाली बदसलूकी जिस्मानी तो नहीं होती, लेकिन इसके असरात उतने ही संगीन और नुकसानदेह हो सकते हैं। अगर आप या आपका कोई जानने पहचानने वाला टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने या उस पर कंट्रोल रखने के लिए कर रहा है तो तब्दीली मुमकिन है। मजीद मालूमात के लिए alberta.ca/ngbv पर जाएं। हुकूमत अल्बर्टा की ओर से पैगाम।
2: 94.7 FM रेडियो सुरसंगम, हर हफ्ते 20 घंटे सुनो, मंडे टू फ्राइडे शाम 4 टू 5, कुलदीप सिंह विचार चर्चा शाम 8 टू 9, जितेंद्र पन्नू। रेडियो सुरसंगम.ca, फोन 403-585-0910। रेडियो सुरसंगम।
3: That was some party, thanks to my buddy's beer and joint. Here's the keys, joint.
4: Yo, I'm not driving, I'm way too stoned. How are you feeling, dear?
5: Oh, since we had that talk, I'm not driving tonight at all.
4: What about you, Dave?
5: You only had a couple of drinks.
6: And only a couple of puffs.
7: I don't drink and drive. No way I'm getting behind the wheel when I smoked weed, too.
4: How are we getting home, then?
5: Come on, Dave. Take one for the team.
8: Don't let weed and alcohol influence your decision to drive.
7: Yeah, I need a ride.
8: A message from Mad Canada.
9: The following program speaks to the East Indian community. Uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.